मैं दुख तेरे ले लूं, मैं भी जीऊं तू भी जिए हो, आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे मार दूं। होने दे रे, होने दे रे जो ये जुल्मी है, पथ तेरे पलकों से चुन डालूंगी मैं।

0: है अपने ही बस में नहीं मैं है कहीं तो हूँ कहीं
1: क्या
0: मैं
1: बात है, क्या
0: ओ,
1: बात
0: है? अपने ही बस में नहीं मैं दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं ओ जाने क्या बात है मेरी जिंदगी ने हंसकर कहा आज मिलने की तमन्ना है।
1: खूबसूरत गाना है।
0: आज

0: थैंक यू।
1: बहुत खूब, राधा जी किन्ने प्यारे गाने ने, वेखो
0: जी जी बिल्कुल।
1: अज भी जो कि रेडियो ते लगे हो मजा आ जाए, हवावा फजावा च खुशबू खिलार देंगे गाने,
0: कन्न सुरीले हो जाते ने सर
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल वंडरफुल गाने।
0: हाय शर्मा हाय शर्मा, किस किस को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। बालमा की बालमा की हाय तीन निशानियां। हाय शर्मा किस किस को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको।

0: नहीं मस्तानी उसके आगे हाय फीकी लागिन हाय सब्र दी जवानियां हाय शर्मा किस किस को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां अपनी प्रेम कहानियां करता है पीला रंग पगड़ी का नीला अरे करता है पीला रंग पगड़ी का नीला रूप उसका कटीला ऐसा है वो छबीला रूप उसका कटीला ऐसा है वो छबीला रंगीला चाल शराबी
1: हाय
0: रंग गुलाबी तेरे अखा मस्तानिया शर्मा किस किस को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको।

तुझे दिल के दाग दिखला तेरे ओ पंख होते तोड़ा तेरे यादों में खोई पहुंची गगन में पंछी बन के सच्चे लगन में ओ यादों में खोई पहुंची गगन में पंछी बन

उनको कुछ चिर मौती उड़ीकेंगे। जेड़ी नार्च लगे इंजेक्शन हो जे बंदे उसका एक्शन नाना सुकन।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक्ते नाल

0: pasado. वो यहीं पर
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

0: pasado?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM
1: ते लो जी सुबह का पाठ करते हैं जी।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट
1: ਜੇ ਚੱਲ

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक्ते नाल रोजाना

हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं जगवंत खेड़ा, थोड़ा होस्ट ते थोड़ा दोस्त, अमरीका दे स्टेट नॉर्थ कैरोलिना दे शहर टोरंटो। जी दोस्तों, आ तुसी सुन रहे हो www.parvazradio.com खेड़ा लाइव शो, जानकारियां भरपूर। दोस्तों, आज असी गुरु रविदास जी दे बारे दे विच थोड़े नाल कुछ जानकारियां दी सांझ पावांगे जी। ते उना दे शब्दां नूं आवाज देणगे दिल्ली तों आराधना सिंह जी, जो के बहुत ऐसे कट सिंगर हन, गायक हन, जो के गुरु रविदास जी दे 41 दे 41 शब्दां नूं गाउण दे विच महारत हासिल करदे हन जी। आराधना सिंह जी जो दिल्ली विच रहिंदे हन, उना दे विचो एक है जी। ते आज असी उना दे मुखार बिंद तो श्री गुरु रविदास जी दे कुछ शब्दां दी सांझ तुहाडे नाल पावांगे जी। साडे नाल जुड़ चुके हन जी आराधना जी।